डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं।

खामोश। जले को आग कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बनती है उसी को लक्ष्मीकांत कहते हैं।

खोपड़ी टूटने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? अरे अभी तो लक्ष्य का एक हाथ गया रे, लक्ष्य का दोनों हाथ दोनों पैर भी गया ना, लक्ष्य किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्या समझे नहीं समझे।

0: நகனை காமை புட்டலா அக காமை புட்டலா அங்காலாயா சுட்டலாய்க தர் தராட் காமை புட்டலா அங்காலாயா சுட்டலாய்க தர் தராட்
1: रो मत गंगू, ये तो दुनिया की रीत है। अरे ये दुनिया वाले न तो खुद चैन से जीते हैं, न दूसरों को चैन से जीने देते हैं। आई हेट टीयर्स गंगू, इन आंसुओं को पोछ दो, ये बहुत कीमती है रे।

स्नेहालय संचलित स्नेहांकुर दत्तक विदान केंद्र, अनवरस, अनाथ, कुमारी माता, बलात्कारित महिला व मुलांचे कौटुंबिक पुनर्वसन स्नेहांकुर

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

परम सदय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना विराजमान श्रद्धे महाअष्ट प्रवर्तक सिंह जी के चरणों में हम सभी की वंदना। स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, श्रद्धालु श्रोतागण, नौ तत्व की रहस्य की यात्रा पर हम चल रहे हैं और एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इस परिसर के एरिया में वॉकिंग डिस्टेंस पर आने वाले लोग घर कितने हैं? वॉकिंग डिस्टेंस सावेड़ी से लोग आ सकते हैं, महावीर नगर से लोग आ सकते हैं, क्या वॉकिंग डिस्टेंस पर के सारे संत, सारे श्रावक, सारे श्रद्धालु आ रहे हैं क्या? वेरी क्वेश्चन, कोई डिस्टर्ब मत हो ना, नहीं आ रहे। व्हाट इज द रीजन? उनके धर्म पर श्रद्धा नहीं है, ऐसा है? धर्म पर श्रद्धा है, आपने कई बार सुना है कि रिश्ते कैसे कि नदी नाव संयोग, है ना? कभी मिल गए कभी भी छूट गए, ऐसा नहीं है। जब वस्तु का आश्रय होता है तो कर्म का बंध होता है, जब व्यक्ति का आश्रय करते हैं तो रिश्तों का बंध होता है। आश्रय केवल वस्तु का ही नहीं होता है, मेरे और आपके जीवन में केवल पदार्थ और परिस्थितियां नहीं आती है, व्यक्ति को भी हम स्वीकार करते हैं, व्यक्ति का भी हम ग्रहण करते हैं, और यह ग्रहण करना ये व्यक्ति का आश्रय है। जैसे वस्तु का ग्रहण करना ये राग और द्वेष से होता है, जिसको मैं पॉजिटिवली लेता हूं उसको मैं प्रेम से ग्रहण करता हूं, जिसको मैं निगेटिव से लेता हूं उसको द्वेष से लेता हूं, वो भी आता है, राग से भी आता है, द्वेष से भी आता है, दोनों का असर होता है, राग का भी असर होता है, द्वेष का भी असर होता है। जिस डिश को आप पसंद करते हैं उसको डाइजेस्ट करना इजीली हो जाता है, बिल्कुल उसकी डाइजेशन की प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाती है। और जिसको आप पसंद नहीं करते वो खाने के बाद पेट दुखे कि नहीं दुखे? हेलो, दुखे ना, कई कारण, वस्तु खराब है, उसको ग्रहण कैसे किया है? भगवान महावीर ने आहार के ग्रहण करने के पांच दोष बताए, कितने? इंगार, अंगार, धुआं, संजोयना, किसी को नफरत से ग्रहण किया है तो काम क्या करेगा? एक्सट्रीमली एग्जाम्पल देकर के रिश्तों पर आ रहा हूं। ठाकुर जी ने मेरा भाई को अमृत का प्याला दिया था, जहर का प्याला दिया था ना? जहर का कोई पिएगा तो परिणाम क्या आएंगे? मरना चाहिए ना? मेरा भाई ने पिया कि नहीं पिया? क्या पिया ये आप बोल रहे हो, मेरा भाई को जाकर पूछो ना क्या पिया? अपने आराध्य के चरण का अमृत पिया, चरणामृत पिया,

0: जाएगा।
1: किसको पिया उसने? जहर को। देने वाले ने जहर दिया, पीने वाले ने अमृत पिया। आश्रय बाहर से जो भी हम लेते हो क्या है? आश्रय। जो भी आता है, तीर्थंकर आए तो भी आश्रम है, गुरुदेव आए तो भी आश्रम है, रावण आए तो भी आश्रम है। किसको ग्रहण करता हूं और कैसे ग्रहण करता हूं? किसी ने तीर्थंकर को भी द्वेष से ग्रहण किया, परिणाम क्या आएंगे? है कौन? तीर्थंकर। लेकिन उनको द्वेष से ग्रहण किया। और किसी ने तीर्थंकर को जन्म जन्म में, इस जन्म में नहीं, तीर्थंकर बनने के पहले थोड़ा सा भेज दे। तीर्थंकर बनने के बाद तो सारी दुनिया ग्रहण करने के लिए तैयार होती है। लेकिन जिस समय तीर्थंकर महावीर तीर्थंकर नहीं थे, जिस समय अरिष्ट नेमी तीर्थंकर नहीं थे, उस समय से राजुल ने और इंद्रभूति गौतम ने जन्मों जन्मों में तीर्थंकर को, तीर्थंकर को नहीं, तीर्थंकर की आत्मा को, और वो नहीं जानते थे कि आत्मा तीर्थंकर होने वाली। उस समय से जन्म जन्म के संबंध है, इंद्रभूति गौतम के और महावीर के संबंध जन्म जन्म के। ऐसा ग्रहण किया, ऐसा ग्रहण किया, ऐसा ग्रहण किया, आश्रय बंध में बदल गया। यदि द्वेष से ग्रहण किया तो दुश्मन हो गया, प्रेम से ग्रहण किया तो दोस्त हो गया। रिश्ते भी राग द्वेष से ही बनते हैं, और रिश्तों के रास्ते से ही कोई तुम्हारी जिंदगी में आता है। रिश्ते नहीं तो आने का रास्ता नहीं, रिश्ते नहीं तो आने का रास्ता नहीं। व्यक्ति तुम्हारे जिंदगी में आएगा, मेरे जिंदगी में आएगा, तो रिश्तों के रास्ते से ही आएगा। और जैसे रिश्ते होंगे वैसा ही उद्योग वो करेगा, वैसा ही करेगा उद्योग। रिश्ता दुश्मनी का है तो आकर के दुश्मनी का ही काम करेगा, रिश्ता दोस्ती का है तो आकर के काम दोस्त का ही करेगा। कल रिश्तों का त्योहार है, कल किसका त्योहार है? रिश्तों का त्योहार है, और सबसे पवित्र रिश्ते का त्योहार है। आई डोंट नो आपको जैन मैथोलॉजी कितनी पता है, लेकिन कल के पर्व को संपन्न करने के लिए थोड़ी सी जानकारी आपको बोर करेंगी तो भी आपने सुनना है। भगवान ऋषभदेव के, तीर्थंकर ऋषभदेव के जन्मने के पहले का जो जीवन था मनुष्य का, वो ट्विंस जन्मते थे। कौन जन्मते थे? ट्विंस जन्मते थे, ट्विंस के रूप में डेवलप होते थे, और ट्विंस के रूप में जीते हुए एक ट्विंस को जन्म देते थे और चले जाते थे। आज की भाषा में यदि उसको कहने जाओ तो बहुत भयंकर हो जाएगा। आप यदि कोई लड़का और लड़की एक साथ जन्म जाए तो उनको आप क्या कहोगे? वो कौन है? भाई बहन है, बराबर है ना? लेकिन उस समय भाई बहन नहीं कहते थे, उस समय भाई बहन नहीं कहते थे, उस समय कहते थे कि ट्विन, सहजात। और जो सहजात है वो सहयात्री है, और जो सहयात्री है वो सहमरण है। जन्मना साथ में, जीना साथ में, और मरना साथ में। ऐसा वो जीवन था। उस समय भाई बहन कहने का रिवाज ही नहीं था, भाई बहन का विषय ही नहीं था। सुनने में कैसा लग रहा, थोड़ा भारी लग रहा है ना, लेकिन ऐसा था। ये भाई बहन का रिश्ता कब शुरू हुआ, किसने सबसे पहले भाई बनाया, कौन सबसे पहले बहन बनी, बड़ी लंबी कहानी है। ब्राह्मी और सुंदरी, ब्राह्मी और सुंदरी, मजेदार है, मजेदार है, अभी बोर गई, अभी मजेदार है। ब्राह्मी और भरत का जन्म साथ में हुआ है। किसका? ब्राह्मी और भरत का जन्म साथ में हुआ है, और सुंदरी और बाहुबली का जन्म साथ में हुआ है। दोनों की यात्रा कैसे चलनी थी? भरत और ब्राह्मी की यात्रा आगे चलनी थी, सुंदरी और बाहुबली की चलनी थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि सुंदरी का मन भरत पर चला गया और ब्राह्मी का मन बाहुबली पर चला गया। अभी इतना कहना पड़ रहा है मुझे आपको ना, क्योंकि आपने कभी जैन इतिहास के पुराण पढ़े नहीं, इसलिए आपने बाकी सारे रामायण पढ़ लिए, महाभारत पढ़ लिए, लेकिन जैनायन नहीं पढ़ा आपको। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, अगेन मुझे क्षमा करना। केवल जैन कम्युनिटी ऐसी है जो अपना इतिहास, अपना पुराण नहीं पढ़ती है, और इसलिए उन्हें जैन कल्चर पर गौरव की अनुभूति नहीं होती। जय भीम बोलने वाले बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन चरित्र पक्का पढ़ते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़ा व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर का जीवन चरित्र पढ़ता है। हर मुस्लिम को पैगंबर की जीवन यात्रा पक्की पता है, हर क्रिश्चियन को जीसस की लाइफ 100% पता है। आप अपना सोचें, आप में से कितने लोगों ने गुरुदेव का जीवन चरित्र पढ़ा है, गीत गाए? आप लोगों में से कितने ने भगवान महावीर का जीवन चरित्र पढ़ा है? इसलिए इतना डिटेल में बोलना पड़ रहा है। तो ब्राह्मी का मन बाहुबली पर, सुंदरी का मन भरत पर। पहले प्रेमी क्या? हेलो, अरे मजा तो लो यार, कई टेंशन में बैठे हो, है ना? इस युग के पहले प्रेमी कोई है तो ब्राह्मी और बाहुबली, सुंदरी और भरत। जिसके साथ जन्मे उससे प्यार नहीं, जिसके साथ नहीं जन्मे उससे प्यार हो गया। और ये कहानी बहुत लंबी चली। अब वो सारी प्रेम कहानी यदि पढ़नी हो तो महापुराण पढ़ लेना ना, बड़ी सुंदर कहानी, बड़ी दिल लुभाने वाली कहानी। आगे ऋषभदेव ने दीक्षा ली, केवल ज्ञाने भी हो गए, तीर्थ की स्थापना भी हो गई, और भरत, जब से ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी, भरत का एक ही सपना था कि मुझे खंड पर राज्य स्थापित करना है, बाप ने दिया उतने पर रहना नहीं है। हेलो, सो बेटे थे ना, बाकी सारे बेटे जितना बाप ने दिया इनफ, बाहुबली जितना दिया बाप ने उतना इनफ, बाकी सभी बेटे जितना बाप ने दिया इनफ। और भरत को लगा कि ये इनफ नहीं है, मुझे तो पूरे 6 खंड को अपने कब्जे में लेना है। हमारे साथ सोच रहे हो कि सुन रहे होते, मेरे साथ सोच रहे हो कि सुन रहे हो? हाँ, सोचता जाओ पीछे, अपन कठे जो को देख ले जाओ, जो बाप से मिला उतना इनफ, उतना संभाल लो, बहुत है। चक्रवर्ती बनना है, क्या बनना है? चक्रवर्ती बनना है। और चक्रवर्ती बनने की इस यात्रा में उसको प्रोत्साहन किससे मिल रहा है? सुंदरी से। दोनों एक दूसरे के साथ सपनों को शेयर करते हैं और बड़ी लंबी यात्रा चलती है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ, 1-7 दिन खबर आई थी भरत के पास कि जिस शस्त्र को तुम बनाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, जिस शस्त्र को बनाने के लिए लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं, वो शस्त्र तैयार हो गया है, बेटी की प्राप्ति हुई है और ऋषभदेव नगरी में पधारे। 3 खबर एक साथ आई और भरत सबसे पहले माता मरुदेव को लेकर के ऋषभदेव के पास गया और वहां पूरे परिवार के साथ जब गए तो भरत का बेटा मरीचि दीक्षा लेता है, सगा की स्थापना होती है और वो सारा माहौल देख करके सुंदरी भी दीक्षा लेना चाहती है। कौन बोलो, थाने मालूम को नहीं, याद करो, कौन? ब्राह्मी भी दीक्षा लेना चाहती, सुंदरी भी दीक्षा लेना चाहती। बाहुबली ब्राह्मी को रोकता है और भरत सुंदरी को रोकता है। मरीचि को रोकने वाला कोई था नहीं, दीक्षा ले ली, बाप ने कहा लेना है ले ले। भरत ने कमाल देखो ना, भरत ने बेटे को दीक्षा लेने दी, बेटे को दीक्षा लेने दी, सुंदरी को दीक्षा नहीं लेने दी कि नहीं। और फिर आगे 6 खंडे की विजय यात्रा चलती है और जब से भरत ने 6 खंडे की यात्रा शुरू करी उस दिन से सुंदरी ने अयम्बिल शुरू किया। लंबा आंकड़ा है, केवन से डर लागे मने तो, कितना आंकड़ा है भाई? 60,000 आए मिल, कितने? मैंने कहा ना मुझे कहने से डर लग रहा है। और किसके लिए? भरत की पूरी 6 खंड की विजय यात्रा सफल हो जाए। जिस उद्देश्य से भरत यात्रा पर निकला है उसका सपना सच हो जाए और 60,000 अयम्बिल करने के बाद सुंदरी का शरीर क्या हुआ होगा देख लो। तीर्थ शिष्य की तरफ 2 महीने में 10 किलो वजन कम हो गया तो 60,000 साल में कितना कम, 60,000 दिन में कितना कम होगा, गणित लगा लो। और जब भरत लौट करके आता है उसके मन में सबसे पहले कौन, किसको मिलने का है? हाँ, सपना पूरा हो गया है, जिससे मोटिवेशन मिला, जिसको लेकर के गया, बस उसको जाकर के और भरत के स्वागत की पूरी तैयारी आए, गजब की तैयारी आए। युद्ध की बात आज नहीं कर रहा हूं, बाहुबली का युद्ध आपको सबको पता है। सारा निपटने के बाद जब भरत राजधानी में प्रवेश करता है राजमहल के पास पहुंचता है, निगाहें खोजती है सुंदरी को और सुंदरी नजर नहीं आती, सुंदरी नजर नहीं आती, सुंदरी नजर नहीं आती। और सारा व्यवस्था का तामझाम इतना, अभिषेक पर अभिषेक, राज्यारोहण, वो सारा उत्सव, सारे लोग उस उत्सव में लगे हुए हैं और भरत का मन कहाँ लगा हुआ है? लंबा लंबे दिनों तक वो राज्यारोहण का सोहा चलता है और जैसे उससे फ्री होता है, भरत सबसे पहले धाई माता को पूछता है, सुंदरी कहाँ है? वो नहीं दिख रही, क्या उसने दीक्षा ली? बोले नहीं ली, तुम्हारी आज्ञा नहीं थी, ली नहीं दीक्षा। फिर कहाँ है, कहाँ है? और सुंदरी की खोज करते करते धाय माता राजमहल के बगीचे में एक कुटिया बना करके रहने वाली सुंदरी के पास लेके जाता है। महल में नहीं, एक कुटिया में। और जब वहां जाता है, देखता है तो सुंदरी आंखों में भरोसा नहीं होता है, लेकिन तेज, आंखों में तेज, चेहरे पर एक अलग आभा। और 60,000 आयुर्मिल के बाद सुंदरी की आत्मा सुंदर हो गई। नमक खाना बंद किया, वासना और विकार समाप्त हो गए। विगय छूट गया, आसक्ति छूट गई। एक अनूठी तपस्या। और भरत पुकारता है, भरत पुकारता है और ब्रह्म सुंदरी कहती है, भाई आपकी भाषा बोल रहा हूं, भ्रात बंधु। और 60,000 आयुर्मिल के उस साधना में बनाया हुआ सूत का एक धागा, भरत कलाई आगे करता है और उसके हाथ पर बांध देता है। ये बहन की ताकत है, ये बहन का सामर्थ्य है, ये बहन की शक्ति है। और इसलिए भारतीय संस्कृति में विजय तिलक करने का अधिकार किसी को है तो बहन को है। एक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, पता नहीं तुमको चुभेगा कि सुहाएगा। भोजनम मातृ हस्ते न, भोजनम मातृ हस्ते न, चुभेगा तुमको। अभी तो तुम किसके हाथ से भोजन करते, तुम तुम्हारा जानो। भोजनम मातृ हस्ते न, स्वस्त्री हस्ते न तिलकम, मर्दनम पर हस्ते न निज हस्ते न दानम। भोजन करना तो मां के हाथ का है, तिलक लगाना तो बहन ने, मालिश करनी तो दूसरे के हाथ से, और दान देना तो स्वयं के हाथ से। ये विजय तिलक करने का अधिकार किसी को है तो बहन को है। क्या इस रिश्ते की गंभीरता है, क्या पावित्र है, कैसे आश्रय किया, कैसे बंद हुआ। और एक आश्रय होता है तो बाकी समर हो जाता है। एक का आश्रय कर लिया, बाकी सबके आने के रास्ते बंद हो गए। इंद्रभूति गौतम ने तीर्थंकर महावीर का आश्रय किया। इंद्रभूति गौतम के जीवन में दूसरा कोई सपने में नहीं आ सका। चंदन बाला ने महावीर को ग्रहण किया, सपने में कोई नहीं आ सका। सबके रास्ते बंद हो गए, वो सोमवार हो गया, बंद हो गया महावीर के साथ, बंद हो गया सुंदरी के साथ, और वो एक बंद भाई बहन का बंद। और कल का त्योहार इसलिए शब्द क्या दिया गया है, रक्षा बंधन। क्या है शब्द, बंधन। बंधन के बहुत अर्थ है, आपको बंधन का एक ही अर्थ बताए, बेड़ी बांध दियो, है ना। बंधन का अर्थ है सुरक्षा, बंधन का अर्थ है निर्माण। घर बांधते हो कि नहीं बांधते हो, बांधने से घर बनता है कि टूटता है। एक रिश्ते का निर्माण करना, एक रिश्ते का निर्माण करना। और इस त्योहार का, इस रिश्ते की तो क्या गरिमा स्वामी विवेकानंद ने फैलाई। शिकागो के विश्व धर्म परिषद में गए थे और वहां का सारा माहौल देख करके संचालक बार बार स्वामी विवेकानंद का नाम ले रहे थे बोलने के, और वो टाल रहे थे, नहीं नहीं। और आखिर में जब कहा कि अब तो बोलना ही पड़ेगा, तब अपने गुरु का ग्रहण किया। पढ़ना स्वामी विवेकानंद का जीवन, उनका और कुछ नहीं दिखा। डिसअपीयर टोटली ऑडिटोरियम, वो देख रहे थे रामकृष्ण परमहंस को, ऐसे ग्रहण किया। और ग्रहण कर करके जब बोलने के लिए शुरू किया तो दो शब्द मुंह से निकले, दो शब्द मुंह से निकले और पूरा हॉल तालियों की ध्वनि से गूंज उठा। दो शब्द, नो प्रिंसिपल, नो लेक्चर, नो मोटिवेशन, दो शब्द। वो भारतीय संस्कृति के शब्द थे, माय डियर ब्रदर एंड माय डियर सिस्टर, मेरे प्रिय भाइयों और मेरी प्रिय बहनों। उसके पहले जो भी वक्ता आते थे उनके मुंह से एक ही संबोधन आता था, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज बॉडी से है, जेंटलमैन बॉडी से है, भाई बहन ये दिल से है, ये हृदय से है, ये मटेरियलिस्टिक नहीं है। और पहली बार उस धर्म सभा को महसूस हुआ कि बोलने वाला हमारा भाई है, ये पुरुष नहीं है और हम स्त्री नहीं है, हम जेंटलमैन नहीं है, हम लेडीज नहीं है, हम ये भाई है, हम इसके भाई है, हम बहन है। जो आज तक उन्होंने सुना नहीं था। और क्या चित्र पलटा गया, क्या दृश्य बदल गया। भारत की सभाओं में अब भाई बहन बोलने वाले कम हो गए, लेडीज और जेंटल

के आधार पर जीना ये उपभोक्तावादी संस्कृति है, और इमोशन के आधार पर रिलेशन बनाना ये भारतीय संस्कृति है। इसलिए यहां भाई बहन का त्यौहार है, और गौरव से खुश सकते हो, पूरे विश्व में भाई बहन का त्यौहार मनाने वाला केवल एक ही कल्चर है, बाकी सारे त्यौहार है, फ्रेंडशिप डे है, वैलेंटाइन डे भी है, लेकिन भाई बहन का त्यौहार की परंपरा कहीं पर है तो केवल भारत में। और क्या इस धागे की महिमा, क्या कल्चर, रानी कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, एक हिंदू मुस्लिम को राखी भेजती है, और क्या उस राखी का गुडविल, क्या ब्रांडिंग कि हुमायूं उस राखी के धागे की आन बान और शान रखने के लिए चला आता है, चला आता है। राणा प्रताप के चेतक घोड़े को राणा प्रताप की रानी ने राखी बांधी थी, और अलग से कहने की जरूरत नहीं कि चेतक ने वो छलांग नहीं लगाई होती तो राणा जिंदा नहीं रहता। ये धागा है, मैंने उस दिन कहा था आपको, इंडस्ट्रीज इंडिया ने, इंडस्ट्रीज कल्चर ने सबको इंडस्ट्रीज में लेकर गया, फूड इंडस्ट्रीज हो गई, इवेंट इंडस्ट्रीज हो गई, सारे रिश्ते इंडस्ट्रीज के हाथों में चले गए। इसलिए कल का अनुष्ठान है कि आओ सुंदरी बने, शब्द कल भी कहूंगा आज भी कह रहा हूं, चाहे वासना का दलदल हो, चाहे शोक की अग्नि हो, चाहे अहंकार का हाथी हो, इसमें से बाहर कोई निकाल सकता है भाई को, पुरुष को, तो केवल बहनी निकाल सकती है। चाहे भरत हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे नंदीवर्धन हो, ये रिश्ता कलाई को बांधने का है, और कलाई इसलिए मराठी मध्ये मन माहित आहे ना, मनगटा ताकत पाहिजे ना, कुठे ताकत पाहिजे, और वहां पर यदि बहन का धागा गाठ बांधे, ये तिलक है, ये धागा है, पर बांधने वाला हाथ किसका चाहिए, यस, और उसके विधि पूर्वक कल का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं एक ही त्यौहार मनाता हूं तुम्हारा परंपरागत, कौन सा, राखी का है, बाकी पूरे 12 महीने में मेरे मुंह से तुम दूसरे किसी त्यौहार की चर्चा कभी नहीं सुनोगे, ना दिवाली की सुनोगे, ना होली की सुनोगे, ना गुड़ी पाड़वा की सुनोगे, ना नागपंचमी की सुनोगे, दिवाली तो मैं मनाता ही नहीं हूं, और आपको भी मनाने नहीं दूंगा। हेलो, दिवाली मैं मनाता नहीं हूं, मनाने दूंगा नहीं, और जिसको जिसको दिवाली मनानी है आज नहीं बोलता हूं,

एक बिल्कुल सिंपल सा वाक्य जाएगा उस दिन, है ना? आज बोलू कि उस समय बोलू? आज बोलू, जो अपने बाप के मौत पर दिवाली मना सकता है उसने कार्तिक को दी, अमोश को दिवाली मनानी।

0: जिन पलों में मेरी इंद्रभूति गौतम बिलक बिलक करके रोते, जिस समय परमपिता निर्वाण को गए, देवी देवताओं के आंखों से आंसू बह रहे, वो निर्वाण कल्याणक का दिन है। अभी तो थोड़े में बोला हूं, तैयार है ना? परुषम पर्व के बाद उसी की तैयारी है। चौमासे की तीन पर्युषण है ना, एक पर्युषण हो गया, अब दूसरे पर्युषण की तैयारी है। और उस पर्युषण पर्व के लिए पहले संघ की मीटिंग हो गई, युवकों की मीटिंग हो गई, कल जिनके हाथ में सब कुछ है उनकी मीटिंग हो गई। अब देखता हूं परिणाम क्या आते हैं। तो कल का त्यौहार किसका है? हेलो, हाँ बोलो ना, बोलो। यस, चेंजर। क्या चेंजर? एक पुरुष को भाई बनाना है, एक नारी को बहन बनाना है, एक कामिनी को भगिनी बनाना है और एक कामुक को भ्राता बनाना है। द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। और आज के इस सारे भोगवादी संस्कृति में, भोग के मार्केट में किसी त्योहार को पहुंचाने की जरूरत है, तो वो कल का त्योहार है। कल की सारी व्यवस्था आपको कौन बताएगा? सिटिंग व्यवस्था, शुरू से वैसे बैठना है। जिन्हें चेयर पर बैठना है, टेबल पर बैठना है, वो पीछे बैठेंगे। जिन्हें जमीन पर बैठना है, वो आगे बैठेंगे। कल आते ही प्रवचन सभा में भी ऐसे बैठना है। केवल जिस समय रक्षाबंधन का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, उस समय केवल क्या करना है? दिशा बदल लेनी है। फिर मंच की तरफ नहीं देखना, किसकी तरफ देखना? हाँ, बहन की तरफ देखना, बहन ने भाई की तरफ देखना है। एक कल का कार्यक्रम रहेगा और परसों से फिर अनेक क्या है, आश्रय करना है। क्या करना है? और आश्रय का क्या करना है? बंद करना है। और ऐसा बंद करो, ऐसा बंद करो, ऐसा बंद करो कि और किसी का आश्रय हो ही नहीं। ओके, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो मंगल पाठ सुनिए, फिर बचकान कर दें। मंगल पाठ।
1: गुरुदेव की आज्ञा।

0: धम्मो मंगलम चतारी लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहू लोगतमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगतमो चतारी शरण बहुत जामी अरियंते शरण बहुत जामी सिद्धे शरण बहुत जामी साहू शरण बहुत जामी केवली पन्नत्तो धम्मो शरण बहुत जामी अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्ररूपी दया धर्म का शरण चार शरण दुख करण सुख करण और शरणा निकोय जो भव्य प्राणी अक्षय अविचल पदो।
1: आज के पचकान 21 उपास
0: 22 उपास
1: ललित जी गुगड़े कल 25 के पचकान लेकर के गए हैं। आरती सुराना खुशी चोड़िया शिल्पा नहार एक बहन यहाँ पर है, दो ऑनलाइन है।
0: 22 उपवास 22 दिन 44 46 वत्तम तिव्यम प्यारमन हतना भगिनम सहस्र गर्णम महोत्र गण सुभस्माई वत्यागरण वस्त्रे उसे।
1: आज का एकासन
0: एकासन गुरुदेव की आज्ञा हुए सूर्य एकासन भजकामी तिव्यम प्यारमन हतना भगिनम सहस्र गर्णम महोत्र गण सुभस्माई वत्यागरण वस्त्रे।
1: आज का एम बिल
0: गुरुदेव की आज्ञा हुए सूर्य एम बिल भजकामी विगे विल के संसते न कितले वाले सगरण मोत्र कर सबस्मय उत्तीर्ण ओसरे उस।
1: आज का उपवास
0: गुरुदेव की आज्ञा उगे सुरे वडम बचकामी तिव्यम प्यार मनतन उगनम सगरण मोत्र कर सबस्मय उत्तीर्ण ओसरे।
1: आज के
0: 11 उपवास 11 दिन 22 24
1: आज के 11 उपवास
0: 11 दिन 22 24 भत्तम दिव्यम प्यारमनतम अग्नि सहस्रगर्ण मोहत्रगर्ण सुभस्माय वत्यगर्ण वस्त्र।
1: 11 उपास के पचकान लेने वाले को चढ़ते बढ़ते परिणाम रखने वाले को और कोई पचकान और किसी कोई पचकान आज के 7 उपास
0: 7 दिन 14 16 भत्तम दिव्यम प्यारम अनंतना भगिनम सहस्र मंत्र ओसरे उसे।
1: आज के 21 उपास खुशी चोड़िया राहुरी
0: 21 उपास
1: ऑनलाइन
0: 21 दिन 42 44 भत्तम दिव्यम प्यारम अनंतना भगिनम सहस्र मंत्र ओसरे उसे।
1: 21 उपास के पचकान लेने वाले को 30 अगस्त को अरहम इन्फ्लुएंसर का पुराने राइजिंग सन के लिए एक दिन का शिविर है। अरहम पेरेंटिंग का 2 से 6 सितंबर रात्रि में 8:30 से 9 आधा घंटे के लिए हाँ 10 है ना, यहाँ मेरे पास 9 लिखा हुआ है। 8:30 से 10 माता पिता अनिवार्य हैं। सीक्रेट ऑफ कर्मा की ओर से 4, 5, 6 सितंबर क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही दोपहर में 2:30 से 3:30 तक कार्यक्रम चलेगा और 6 सितंबर को पुनः एक बार 4 से 5 अरहम मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। सूचना

राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य आनंद श्री मन साहब के चरणों में कुटिशा वंदन। मंच पर विराजित महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य कुंदन श्री मन साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। उपाध्याय प्रवर पूज्य प्रवीण श्री जी महाराज साहब, अलोक श्री जी महाराज साहब, तीर्थेश जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। साध्वी वृंद के चरणों में कोटिशा वंदन। उपस्थित सभी भाई और बहनों जो तपस्यार्थी है उनको समर्पण चतुर्मास समिति की ओर से सुख साधा की पूर्छा है। कल रक्षाबंधन का कार्यक्रम व्याख्यान के पश्चात यही मंडप पर होगा। व्यवस्था कल आते ही साथ आपको बिठाने की हमारे समर्पण चतुर्मास समिति आपको उसी तरह से आगे का जो

और उसका निरीक्षण होने के बाद उसका प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा। साथ में ही कल आपको आना है, आपके पड़ोसियों को, आपके मित्र परिवार को भी रक्षाबंधन को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति यहाँ पर आप अपनी ओर से प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहने का प्रयास करें। बाहर गांव से आए हुए गुरु भक्तों की भोजन, नाश्ता, ब्याड़ू की व्यवस्था और शहर के भी जो गांव के एकांश लेने वाले हैं उनकी भी व्यवस्था पीछे भोजनशाला में श्रीमती प्रमिला ताई सौरभ जी बोरा परिवार की ओर से रखी गई हुई है, उसका भी आप लाभ लेवे। जय आनंद, जय महावीर।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।